और आप जी का फरमान है कि ये जड़े शस्त्र ने एहो ही मेरे पीर ने, क्योंकि जड़ा सूरमा है वो शस्त्रां दा इसे तरह पूजता है जिस तरह कोई अपने गुरु की पूजा करता है। तो गुरु साहिबा ने शस्त्रां दी पूजा करके ये जड़े हिंदुस्तान दे लोग मुगलां दे गुलाम हो चुके सन, इन्हां दे उच नवी रूह फूकी और कह दिता जे जीवना है अणख नाल जियो, जिदी अणख नहीं उहदा भी कदी जीवना होया है। सतगुरां ने हाथ विच कृपान पकड़ी और कहा आओ जिन्हें जुलम ते जित प्राप्त करनी, जिन्हें अणख दे नाल जीवना है, आओ मेरे कोल, मैं तुहानू दसा इस संसार विच किस तरह जुलम खत्म करके

परमेश्वर नु भी कई नाम देते और तीरा तू फंगा नु भी पीर गया। साहब जी कहंदे ने तीर भी तू ही है, सैती भी तू ही है, तू ही तबर है, तू ही तरवार है, के तू ही तीर है, तू ही बरशी है, तू ही तबर है, तू ही

एक बरछे दा नां जिदा गुमू सप दी तरह सह बन के अबचित्र सिंह ऐला साडी नागनी और तू हाथी दा मुकाबला करना है। भाई बचित्र सिंह ने मथा टेकया गुरु तू थापड़ा लिया एक हाथ विच नागनी फड़ी घोड़े ते सवार होके अपने कुछ साथियों दे नाल किले का दरवाजा खोल के भाई बचित्र सिंह जकारे छड़दे हुए किले तो बाहर निकले ने सामने अगे अगे मस्त हाथी और पिछे राजियां दी फौज आ रही है। इन्हां सारे राजियां ने एहो ही सोचिया हाथी का मुकाबला कोई आदमी नहीं कर सकता इन्हें किले का दरवाजा तोड़ना है असा किले ते कब्जा कर लेना है। ए मस्त हाथी झूमदा होया अगे वधे आ रहा है। भाई बचित्र सिंह सामने होए हाथी दे इन्हां घोड़े दी लगाम पूरे

प्रेम ना करो, एक परमेश्वर की आराधना करो, तो फिर देखो तुहाडी किस तरह जित होवेगी। ते कहंदे ने इहो ही उपदेश साहिबां ने सारिआं नूं दित्ता।

मारू टिक हुई आत्मा विच अणख जाग उठती है, क्योंकि उत्थे केवल सच टिकिया हुंदा है। सच है निरभउ निरवैर, इसलिए स्वयं धर्म दृढ़ हुंदा है। अजेही आत्मा विच जुर्रत भर जांदी है, बेपरवाह हो जांदी है, कायरता नस जांदी है। ए है मारू दा प्रभाव, सुन कै सुध न रहे कायर की, जब बाजे धुन मारू। फिर मारू राग विच वैराग भावना दी भी प्रधानता होण करके इसनू प्राणी दे चलाने समय गाउण दी भी प्रथा है। सो युद्धां समय अते चलाने समय इस राग नू गाया जांदा है। एक पासे तां इस विच जोश है, दूजे पासे वैराग। जोश दी भावना विच भगत कबीर जी फरमांदे हन, सूरा सो पहचानी है जो लड़ै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कभू ना छाड़े खेत। एक वो आत्मदर्शी सूर में हन जिन्ना दे गगन नगर विच दमामे वजदे हन, अते माया तूती दी आवाज नहीं सुनदे। जीवदियां उना नू मरण दी सोझी हुंदी है, इसलई आत्मक पंथियां नू आदेश है। पहला मरण कबूल, जीवन की छड आस, हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। सारी हालतां विच मारू गावियां ताही सफल है, जे शब्द अंदर है, जे पंच बहराई जित ले गए हन। गुर के शब्द आराधी है, नाम रंग बैराग, जीते पंच बैराइया, नानक सफल मारू एह राग। मारू बड़ा प्रसिद्ध अते पुरातन राग है, इसनु कई नामां नाल पुकारिया जांदा है अते भिन्न भिन्न ढंगां नाल गाया जांदा है। साध संगत दे चरणां विच बेनती है कि जिवें श्री दरबार साहिब विच अमृत वेले तो रात तक कीर्तन दिया अठ चौंके दी परंपरा है, जिन्हां विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचों 31 रागां विच उचारी अमृत बाणी दा कीर्तन निर्धारित रागां विच हुंदा है, उस तों सीध लैके गुरु बख्श कीर्तन दी मर्यादा नूं मुड़ प्रचलित करन लई ही अदुत्ती गुरमत संगीत सम्मेलन एक निमाणा यतन है। शुद्ध रागां दे सरूपां नूं सर्व प्रमाणित अते प्रमाणिक रूप देण लई राग निर्णायक कमेटी बनाई गई। विद्वानां ने शुद्ध रागां दी इकसारता अते सर्व प्रमाणित प्रचलन लई शुद्ध सरूपां नूं अंतम रूप दिता। यह पहला उद्यम है, इसलिए इस विच रहियां कमियां विचार द्वारा दूर कीतियां जा सकदियां हन। राग मारू दा जो पुरातन स्वरूप गाया जांदा सी लगभग अलोप हो चुका है, उसे स्वरूप नूं मुड़ प्रचलित करन लई जो पुरातन स्वरूप निश्चित कीता गया है, उस विच दोनों धैवत दोनों निषाद अते दोनों मध्यम दा प्रयोग हुंदा है। आरोह विच रिश्वत नहीं लगदा, इस दा वादी स्वर गंधार अते समाधी निषाद है। गायन समा तीजा पहर असी दलीप चंद्र बेदी जी दे अति धन्नवादी हां कि जिन्हां ने सानू मारू दा इह सरूप दस्या। इह ओह सरूप है जो पुरातन रागी रबाबी सिंह गाउंदे चले आए हन। हुण सरवण करो प्रोफेसर करतार सिंह जी पासों शब्द, मोको कोई न जानत कहियत दास तुम्हारा।

हर जियो निमाणिया तू मान। हे हरि वाहिगुरु, तू निमाणिया दा किवें मान है? पातशाह कहिंदे ने आड दाम को छिपरो, अद्धी कौडी दा छिंबा होयो लखीना, लखां दा हो गया। पर किवें? पैसा भाई गुरदास जी कहिंदे ने

मेरी ड्यूटी देना आ गए, कैसी बात है। कितने असी भी परमात्मा नाल जुड़ के परमात्मा की ड्यूटी निभाइए, वो मालक भी साड़ियां ड्यूटियां देवेगा। बिल्कुल ऐसा हुंदा है। कहिंदे ने अज इस गल नूं वेख के हैरान होया, दूरो राणे सदके गलो को आए, खोल पहनाई बस कीता हो तुद अद बोले, राधा सुने लुकाई प्रगट पई भगत वड़ी है। ये वड़ियाई भगत नूं मिली है। ते साध संगत सतगुरु जी ने बाणी विच उपदेश दिता है, सहन नाई बुतकारिया ओए कर कर सुनिया, हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगता में गणिया। अंत भी सतगुरु जी कहिंदे ने ए

ऐसी उड़ारी मारी कि मानो दुनिया पलट गई। एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, चार चुफेरे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही। एक छोटा जिया पानी दा तल है, कुछ महात्मा बैठे ने कीर्तन शुरू होया। एक बड़ा ही तेजस्वी पुरुष इन्हां सारिया दे विचकार बैठा। कीर्तन ऐसा शुरू होया, उस कीर्तन दे विच सारे गवाच गए ने। सुरत ने उड़ारी मारी एक अनुभव नगर जा पहुंचे। ऐसा नगर जिदे बड़े बड़े ऊंचे मकान ने, बड़े बड़े वड्डे महल बने हुए ने, पर ओ महल इट्टां गारे दे ने, हीरे जवाहरातां दे नालों भी सूक्ष्म शहद बने हुए ने। उस शहर नूं बेगम पुरा भी कहंदे ने, जिथे गम कोई नहीं। तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी इस शहर के अंदर दाखिल होए हां। इस शहर बारे धन गुरु अर्जन साहब अपने शब्द

बड़े बड़े वड्डे महल ने पर इना महलां दे विच रहिंदा कौन है सिर्फ उस परमेश्वर दे प्यारे रहिंदे ने

ऐसा महल उसर जांदे, फुल भी लगे नहीं, फुहारे भी नहीं, फुल तोड़ लो ओदी जगह दूसरा फुल आ जाएगा, क्योंकि इत्थे मौत नहीं। इस शहर बारे भगत रविदास जी आपां नूं कुछ ज्ञान करवांदे ने कि इह शहर कैसा है।

कुछ आत्मक मंडला वाले लोग बैठे हैं, एक तख्तपोश है, उस महल का फर्श मानो हजारा तारे जड़े हुए, छत मानो लखा ही चंद्रमा जड़े हुए नहीं, तख्तपोश भी सूक्ष्म शैदा बने हैं। इस तख्तपोश से एक दिव्य मूर्ति विराजमान है, जिदे विचों करोड़ां सूरजां दी रोशनी निकल रही, पर ए रोशनी गर्मी नहीं देंदी, जीवन दान देंदी। ओ दिव्य मूर्ति जिदा कोई अंग नहीं, कोई रंग नहीं, पर फिर भी सब कुछ है। तेजस्वी पुरुष दे नाल दिव्य मूर्ति दे सामने असी भी होए हैं। तेजस्वी पुरुष ने सिर झुकाया, दिव्य मूर्ति विचों आवाज आई, हे प्यारे नौ जामी धार के और अनेक कष्ट सहार के, जो तैं दुखी सृष्टि पर परोपकार कीता, मेरी प्रसन्नता दा कारण बने है। हे प्यारे तू हुण मात लोक विच जा, देव मूर्ति कौन है जिन्हों आपा अकाल पुरख कहने, तेजस्वी पुरुष दुष्ट दमन कलगी तर पातशाह। जदू एक या, ऐ दुष्ट दमन ऐ प्यारे तू हुण मात लोक विच जा, ते कलगी तर पातशाह आप कहंदे ने कि उस वक्त ए हुक्म सुन के ते साडा मन जिहड़ा सी वो मातलोक विच आण नू मन्या नहीं, जिहा कि आप साहब जी लिखते ने।

0: ज्यों त्यों प्रभाम को समझायो इम कह के लोक पठायो
1: मन नहीं मन रहा पर अकाल पुरख नहीं समझाया ता दुष्ट दमन जी कहंदे ने संसार विच अंधेरा बड़ा है अज्ञान दा बचन कीता ऐ प्यारे मैं तेरे विच चानना बन के रहांगा जिथे तू जाएगा अंधेरा दूर भज जाएगा ते नाले मैं तेनू अपना पुत्र बना के संसार

दुष्ट दमन जी उस बैबान विच बैठे ने, वो बैबान वापस इस अनुभव नगर बेगमपुरा शहर तो तुरे आ, जिन्हों आपा सचखंड भी कहने, जिथों तुरे आ सी हेमकुंट नाम दे पर्वत दे असी वापस आए, इत्थे आराम कीता, इत्थों ए बेबान तुरे आ किथे जा पहुंचे है। गुरु तेग बहादुर साहब दे महल, माता गुजरी जी दे दीवान खाने, अमृत वेले आत्मक मंडला वाले जीव स्वागत वास्ते पहला ही हाजिर सन, आरती उतारी जा रही, आनंद मंगल पढ़े जा रहे ने, आत्मक मंडला वाले खुश हो रहे ने। अचानक प्रकाश होया, हर पासे बनस्पति खिड़ गई, मानो अज दुनिया दा भार हरण वास्ते एक होर जोत प्रगट हो रही है। कुछ घड़िया बाद हर पासे खबर फैल गई कि माता गुजरी जी के ग्रह एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, ते कलगीधर पातशाह आप लिखते ने कि साडा प्रकाश पटना साहब की धरती से होया। मुर पित पूर्व क

हेमकुंड पर्वत जिथे अज हजारां संगतां दर्शन करन वास्ते जांदियां ने, सचमुच मन सच्चा प्यार सच्चा ते कलगीधर पातशाह फिर आप लैण वास्ते अगू आंदा है, अपनी गल दे नाल लगा लैंदा है, अपने चरणा दे विच जगह दे दिंदा है। आओ भाई उस दुष्ट दमन दे तपो स्थान दे आपां भी दर्शन करिए, कीर्तन करिए, सुनिए। हो सकता है कीर्तन सुनदे हैं साड़ी भी सुरत उड़ारी मारे ते उस शहर दे विच सानू भी जगह मिल जावे, साड़ा आया सफला हो जावे।

सब में जोत जोत है सोए, क्योंकि तू सर्वव्यापक है। सारे अंदर हे परमात्मा अकाल पुरख केवल तेरी जोत है, सब में जोत जोत है सोए। जिवें तू सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है, हर था रमिया होया है, इस तरह तेरी जोत सारिया विच व्यापी हुई है। तिस तै चानन सब में चानन होए, कहिंदे सारिया अंदर चानन प्रकाश हे मालक तेरी जोत दाई है। तिस कै चानन सब में चानन होए, तेरी जोत दा सारिया अंदर प्रकाश है। एक चानन है पर एक गल सतगुरु ने कमाल दी कर दिती, गुरसाखी जोत प्रगट होए। ए जिहड़ी जोत है ना, गुरसाखी जोत प्रगट होए, हुंदी गुरु दी कृपा नाल है, एवें प्रगट नहीं हुंदी। जब तक असीं गुरु नूं नहीं ना मिलांगे, ए जोत साडे अंदर प्रगट नहीं हो सकती। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जदों गुरु की कृपा नाल अंदर जोत जग पवे, ते फिर की हुंदा है,

हे निर्गुण स्वरूप, हे दुनिया दे मालिक, हे सृष्टि दे मूल, हे जगत नू बनाने वाले परमात्मा, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया। बड़े बड़े सिद्ध जोगी जती जिन्ना ने तेरा ध्यान ला के, तेरा ध्यान तर के बड़ा बड़ा तप किया, बड़ी बड़ी भगती की, सिद्ध समाध समाधियां ला ला के, पर कहते ने अंत नहीं पाया, तेरा अंत ना पा सके, तेरा अंत ना लै सके। फिर की होया, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, कहते ने आकर हार के तेरी शरण में आ गए, तेरी शरण में आ डिगे, तेरे चरणा नाल लग गए कि हे मेरे मालक, असी तेरा अंत नहीं पा सकते। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, लिहो आरती हो पुरख नरिंजन, सतगुर पूजो पाई। भाई जी वह अंत नहीं पा सके, उन्होंने आखिर मालिक के चरणों में डिगना पिया, ते तू ही उस लैंड ते ना तुरी, तू वह आरती करनी है जेड़ी आरती तेनों गुरु ने समझाई है। केड़ी आरती है? सतगुर पूजो भाई, आप ही अपने गुरु की पूजा कर, अपने गुरु के चरणों नाल लग। अगे भगत कबीर जी ख्याल देते हुए समझाते ने, कहते ने, ठांडा बरमा निगम विचारे। आरती उसकी करनी है जिसके दरबार विच बरमा वर्गा खड़ा होके, ब्रह्मा बहुत बड़ा देवता है, पर ब्रह्मा भी उसके दरबार विच खड़ा होके वेद विचार रहा है। ठांडा बर्मा निगम, निगम का भाव है वेद। ठांडा बर्मा निगम विचारे, अलख ना लखिया जाए, क्योंकि हे परमात्मा तू अलख है, लखन तो बाहर है, तेरी लीला लखी नहीं जा सकती, तेरे गुण कहे नहीं जा सकते, तू इतना बेअंत है, तेरे गुण बयान नहीं कीते जा सकते, अलख ना लखिया जाए, वो अलख है जो लखिया नहीं जा सकता। अगे भगत कबीर जी कहते

वणजकरन लगे 24,000 श्वास रोज दे साडे खर्च होंदे हन असी कदे नहीं विचारिया भई कितने कु सफल होए हन कितने कु असी तंदियां विच उजाड़ दिते हन साडी हट्टी लुटी जा रही है श्वास जाया जा रहे हन पर असी बेखबर होके विचर रहे हां इसलिए हजूर बख्शिश कर दे हन भाई तू जाग ए जितने तेरे पसारे हन किसे काम नहीं आने वाले मनुख ने दो प्रसादे छकने हन वस्त्र पहने हन और रहना है इतनी को लोड़ मनुख दी है पर पसारे कितने पसारी बैठे हैं।

कुछ मनी बैठे हैं। जिस तरह कोई किसी घर विच रहिंदा होवे ते अपने आप नूं मकान ही समझ लवे, जिवें ड्राइवर अपने आप नूं मोटर समझ लवे, असी भी इसे तरह साडा संसार ते आउण दा जो शुभ मनोरथ है वो कुछ होर है। वो है सत दी कमाई कर

इतना सिद्क और प्यार दे नाल मेरे अगे कोई नहीं झुकदा, इना अगे क्यों झुक रहे हैं? ता बेनती कीती महापुरखां नूं, महाराज भई ना तां कोई तुहाडे कोल राज भाग है।